0: थुरास थुरास
1: थुरास ऐ तारीका अहर मेंग बहा सगाफता आद का दायक तेरेगा आद बावर गंत तके हुरे अडवहालं बेनुं ता
2: हाँ वारा बेनो
3: दिविराज गन ट्यून कोला अंगार दुग हावीर फाहिज जहर बुरास दुग हावीर हाथरगड फनराग अदी आदित दुग हावीर फाहिज जहर हमें कन दिविराज के आड़ो

0: हांगार अंगार दो मिंदुल कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो होगे रे मिंदम पार गड़ तिरी हूं हांगार
1: हम एकनी दिवे राज्य चाडू प्रेजेंट करूंगे दायराइन मदर साधक के दरिवरूंगे हुनर का कालो
2: शाय ऐदो हो उसको कैप्टन के मागाम लेबोंगे रो शाय कौन काले हो सास्ता के खोरे वोने
3: हम वरा वरा उफाल
4: मजीदिया स्कूल की राज्य के निजामी थावलिम के मुन्नारो ऐ जमानी निजामी थावलिम के फैशन
5: अलगन में गे स्कूल गाहिंगा कंतत्तका अलगन में होदा फवा कामयाबी ता हिस्सा कुरंदी बे मि फुर्सत की अलगन में दारिवरुनल दी बे वरब बडो
6: वर कोडेर सुरस बडो बेर लवस अडो हावलम ए हंग गस अलवड लव के हिवे
7: रमजु मि कौमी खयालो आवारी तिवी माले
8: अलगन इस्मादान बिन नाफिज मि बद्दकुलनी होरा स्कूल गे प्रिंसिपल अमनत अरीशाया मैडम कहने तो हालो।
9: अल्हम्दुलिल्लाह।
5: मदर साकू देंगे गाड़ी। अलगन मेंगे वगुत।
10: मैं है सब शायन गामे लमा दहे गाड़ो हालो कहने वाले को।
11: इते मी फूरे नी रसूला हंदू मावे।
1: एंगा सातरस्ते का साढ़े सौ एक किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि अड्डे हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड। दिवे ही राज्य गाड़ो।
0: मदर साकू देंगे गाड़ी। हुकुर दोग हेंदुनो दिहाई जहार। रिपीट होम दो घावीर हथर गड़ी सारे स्वाकों आदि अंगार दो ग्रेगंड नुआई जहर हमारे कहने दिवे ही राज्य गाड़ों
1: इवे ने नाला इरी हूँ ताहम मदे नुकरा ए उन दा को दस्सब वर्वस नुकरे वे एकमको एकोलोना एलोबी ए जज्बाता ऐ हुसासम मिहि फुरी पांडो मणि
12: मिहि तुगे लोई पेती
1: कोमे बुददो है गे मेंदुर कुरे एगार गडी फनरे रिपीट हम एरे दिहा गडी तिरी हो
13: इन हा सतरस्ते के सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि अड्डे नुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
12: दिवे हिराचे के अडो
13: इंतजार कुगा
12: मिहि तुगे लोई पेती
0: दारी ने कि मैं अल्लो हवाल करवा फावा अमाना थे।
5: दारी ने कि मैं बफेंगे लोलो के फिनी कं।
0: ए दारी ने घियो मकु दात क्या दिन मकि मैं बफेंगे जीम्मा।
5: ए हित्ता कुके मामे लामे ली।